0: अपने वहां पर रख रहे थे।
1: Should I continue to switch on, or am I recalling?